हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याई हर पुरख निरंजना, रहाउ जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी।

जप हर भव जल तरना सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ काले कलेस तन माहि मिटावौ सिमरौ जा

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करे हुई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद व पुराण के ते सिमृत समूहन के होय होय बितय है। मौनिधि मदान के तय सुनि कुमार के तय अंश अवतार के ते काल बस भय है। पीरे और पिकाम्बर के ते गण न परत एत भूम ही तय के फिर भूम ही मिलय है। जो कि जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही किसाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट बेस पोसती अनेक दानी बावत है। शीस को कह भय मल्ल जप काढ़त अनेक दंड सो तुनो डंडौत अस टांग अथ तीस को कह भयो रोगी जो पेडारो रहो ऊर्धमुख मन तेना मुंडने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूँ के शोक सो आंख को चरैया फल फूल को भुचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सो कहा भयो भेड़ जो घसत शीस बिछन सो माटी को भुचैया बोल पूछ लीजे जो कुसो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस भेट पर लोक सो नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करी करत है। एक पाय ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक बाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बैरागी बने का बहू सन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकार पर शीतकाल कुंजर ओ गदहा अनेक दा पुकार ही कहा भय जो पकाल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठा रंसो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ो जट कंक धार डार डार फांस

अनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पिपायत जाप देव बोधना सदीव तुही उचरत है। नाभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत कतराण की परत कर पताल के बासी।

कुरान हुई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यार न्यार हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नदी ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत फच केते अच वच हो सच उड़ जाएंगे। केते नभ बीज अच पच को करेंगे फच केतक प्रत अच हो।

हंसने हंसनाथ उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न विद्र सूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं अभेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनीय छय अदवयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभयनिर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न गायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मं न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध विरदं स्वरूपे नमो।

देहग्रहंग हूँ देह दुखंग हूँ औखदी रोग के शोक सुखंग हूँ देव विद्या कहूँ दैद बानी कहूँ जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हूँ कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हूँ कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जच्छ विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग हूँ वद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं।

भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश बाख्या कहूं देव बाने कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं

रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं ले गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास

जे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितंग जय चृचियं छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वाख न दाग न दुख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो तस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु बिंद न गिंद न गंग श्रेय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपान त्रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंगी ये देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय दात न मात न व्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथा दिग पांद गणंग बहुभूत भविख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो

जो कुजुगं भुवंजन गंजन आदि तरंग जहे बंधत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जहे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण।

भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व साथ है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप।

न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है।

की अनाद बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र सत्र सने जानिए। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे, तुरंत द्रोह देह के

देव देव गंधर्व किन्नर माछ कछ अपार। भूमका जले थले मह मानिए जय नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम। दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद। मित्र पालक शत्रु घालक।

अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र, वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र, जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव न पावे शिव।

ध्याय ध्याय थकवे सब है कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पचर पार, सोत सोत थके महासुर।

सुरमर्दन रमक बर्दन दैत जिन चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन धुजा फरंगण फणी फुंकारण जोत जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैघा सुर मर्दन भूमा कास्तल उर्ध्य थे दामनी प्रहासन सुछम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय।

दुष्ट प्रचारण सृष्ट उबारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सहारण साध मते सहति सन्नाहन आश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुरंग जय जय हो सीमा घासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चुर हारण धूम धुंकारण दाप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य

तेज प्रकर खंड धुंध तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अकाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तब तपतापन जपत जीवे जय जय होशी शास्त्र प्रकर खंड आद अनिल अकाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण

घंट का विराजे रुंझुन बाजे ब्रह्म भाजे सुन सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुखूप राजे मध उरंग दुर्जन जल दज मंथन रिज सब न भज रूह रणन जय जय उसी मखा सुर मर्दन चंड चक्र धन आद गुरंग चाचरी प्रचोधन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर विते धूम राज विधुन सुन प्लर प्रजुन संजक विधुन सं शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रताहन गाढ़ मते जय जय उसी मखा सुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते कत्रियाण कतंगी अभ भंगी आद नंगी अगाध गते वृड़लाज बिहंडन चुर दंडन तेज।

राम ने प्रकाश है उन तरना से ज्योत प्रकाश है अतुल बले दान वीर प्रकर खंड सर वर वर खंड दुष्ट प्रतर खंड पितल तले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय उसे मैं खासुर मर्दन आद अनाद अकाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत व्रत

करण करी ली गर्भ गही ली ज्योत जति ली तुंद मते अष्टायद चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आदभृते डुकडुकी दमंके बाघ बबंके ऊजा फरंके शुद्ध गति जय जय हुसी मखासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरा सुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानंचारे नरक निवारे पतित

सरदार विवर खण दुर जंधर खण तुल नमर खण धरम धुजे धूमराज विदुन सन श्रोणत चुन सन सोम्भन पातन सोम्भ मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे।

बात नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सतर मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप चल पार जानी न जाए जय रूप रेख कहे बात।

आनंद जिह नेत नेत निस दिन उचरंत। त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे नित संतु पार गली मन गारे पछ पशु नक नाक नराधिव सर्व समय सबको व्रत पारे। पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत न हारे। दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम के प्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमावत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज रूप रूहान की रोज नटारे। कीट पतंग को रंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहम एव ना भेव लख्यो भ्रम से फरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद से किन श्री पदमा पद पाए। आद अनंत अगात तब एक्सो भूत भविख भवान अभय है अंत भी नानात्मा पदा का दोखा छिद्र छह है। लोकन के करता हरता जल मैं थर मैं भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह है देह भी न स्नेह सबोतन नेह विरक्त अगेह अच्छ है। जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुम्हरे सुध सुंदर श्री।

और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही के बड़ बीच बचावे। जच भुजंग सुदान देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सभे सरण्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हूँ को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से जदुर आनंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न वेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद से तो सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितूज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव पुराना भे नृपान सभ बचहारे। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेद है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग।

अत्र के चलैया चित्र छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया वसान के देवैया कटैया जम जाल है। जोध के जतैया और विरोध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देवकार हूँ के काल महा

सोई थी सी जो तू दहे सोई हाँ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी दयाया जिसनू कृपा करह तन नामृत न पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तद आप विछोड़िया।

कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुंचरिय स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने।

जीते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताक।

भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखान जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूपा अंडज जीरज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काहू फूल राजा हुए बैठा काहू सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आ जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उवार असिख संघरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस दुजताउ शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहीं सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्गवास स्वर्ग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो कहे कथा सुने अर गावे दुख पाप तहन कट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई सम सत्रह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन।

थरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मानियो। सिमृत शास्त्र भेद सब बहुभेद कह हम एक न जानियो। श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कर।

रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा मत ऊंची मत पद का राखा आप। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरिमंदर साहिब अमृत सर सरोवर जी के स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन

राजे कर सुतक मनी है सबसे सुतक होए गोए ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाजना कोई पहला पानी जो है चित्रया सबको सुतक कर।